याज्ञा करम है सर्व बलदारियो अनाति अनंतो दिव्यनी मोक्षां पन मातावन खान्य मारिय तुमांगे गतहा प्राणय उबिगे श्री कुमार अट बिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतटु सिह करनो तुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवीम सलसु मनव මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා ආමෙන්